नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारां ने चुक के बाहर मारे। पंडतां ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गई। कहिंदे ने मोढे ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह ही हैं कैसी कमाल की गल है जी नामदेव हरिमंदर उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला दे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

सारस्वती बक्ता करके सारस्वती बक्ता करके जुगकोट गणेश के हाथ लखे हूं।

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कैद कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता कराउंदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे न उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुण ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे। इस

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां, मैं ता ओदे घर दा नौकर हां, ए हुण ओदी मर्जी है।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल,

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो। मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वल सिपाही लै के तुर पए। एक बेड़ी दे विच कबीर साहब नु बठा के सिपाही गंगा दे अध विचकार लै गए, जिथे बहुत ही डूंगा पानी सी। कबीर साहब दे पेट दे नाल एक पत्थर बनिया, कबीर साहब नु चुक के गंगा दे पानी दे विच सुट दिता। कबीर साहब जी आप बयान करते हैं।

छुपाई। थाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा है ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर कठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

आप ही हवा जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है जे उन्हें मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता है।

पर ओ जड़ा हाथी ओ कबीर साहब नू लताड़दा नहीं। बड़ी कोशिश की थी पर ओ जड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नू मथा

0: काजी नू हाले भी समझ नहीं आई। ओ हाथी इना लोकां नू एक सवाल करदा है,
1: क्या अपराध संत है कि ना।
0: हाथी कहंदा है इस कबीर दा अपराध की है, इना ही कि ए परमेश्वर दा नाम जपदा है, जेड़ा परमेश्वर दा नाम जपदा है उन

कंदरलो दी दुनिया दा बादशाह अज नंगे पैर कबीर साहब दे आके चरना ते मथा टेकिया ते उपदेश मंगया। कबीर साहब कहन लगे भाई अकाल पुरख ने बादशाही दिती ते ओदे बंदियां नू तंग ना कर, तू भी ओदा सिमरन कर, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। इस तरह जेड़े भी राम दी ओट लैंदे ने राम उन्हां दी रखिया।

तू हाथी के सवार हो गए। गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है मैं बहुत खुश।

मौलवी साहब कहने लगे अच्छा तू दस। मैं तो एवं सवाल किया बिना मतलब का सवाल, पर जे तेरे को जवाब है तो तू दस। बच्चा उठ के कहन लगा मौलवी साहब वैसे तो खुदा हर जगह है हर पासे है, अगर वो किधरे नहीं तो इंसान के चेते विच नहीं। आखो सतनाम सिंह वैसे तो खुदा हर जगह है अगर वो नहीं

ता पिता ने किया बेटा ओत ज्योति जोत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावा। ता पिता ने कहा बेटा धर्मशाला विच संघ इकट्ठा हो रहा आनंदपुर साहब जाने वास्ते तू भी उन्हां दे नाल चले आ जा।

पिता ने दिता ते गया बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उजैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए हूं मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा हो गया क्योंकि उसकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुओं की संगत करता सी ते जो देखता सी उसे तरह गुरु साहिबां

क्योंकि जैसे कोई कर्म करता है उसनों फल भोगना पड़े। और माया का थोड़ा जहा लालची लम्मा पिया सोचता है मना 600 रुपये बेटा धरा के ना धरा आखो सतनाम श्री गुरु। जिस समय की असी गल करते हैं उस वेले का 600 रुपया अज के हजारा नालों ज्यादा कीमत रखता सी। कह लगा दरबार भी चंगा संगत भी बहुत।

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही तो साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया। हुण जिहड़े भी रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, पर सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया। और ये कहता है जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, जो जो कीर्तन सुने मन भट गया, नहीं मन मन दे विच ही टिक गया। आखो सतनाम श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है। आखो सतनाम श्री हो। पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहार एक महीना सेवा की थी। और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबा को भेट करके मत्था टेके आया। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों एक सरवलोह का कड़ा दिता, जिहड़ा कड़ा सी हाथ विच बने। नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदब रखी, जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। बड़ा खुश होया, खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरे। पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तो बाहर आया तो सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री। माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जदों गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, होर गल्लां याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब को निकले तो सारा आनंद गुआच गया। कहन लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया। एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने, जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैं 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम श्री हुआ। उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नूं भेटा कीता ते गुरु ने मैनूं की दिता।

ते नाले के है। सिख सिख का सत बणज सिख सिख का पाओ दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख नु सिख नाल दगा नहीं करना चाहिए। ते गल सुन

उन्होंने बड़ा खुश। पिता ने पूछिया, सुना फिर बेटा, गुरु दे दर तू की लैके आए? जद के यार गुरु कोल की लैके आए हैं? ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी। जद इन्हें यह कहा, मैं गुरु

ऐ सुत ऐ पुत्र ऐडा वड़ा कोर पाप क्यों कीता तू गुरु दा वचन क्यों बेची है। पिता ने समझाया मां ने समझाया पर हुण सामने सोने दिया हो रहा अग सदन आप श्री हुण सिखिया।

अपना दुध प्याया ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दे। मां बड़ी सियाणी सी, कहन लगी अच्छा हरी सिंह तू इस लायक हो गए, मैं तेनों जन्म दिता है, तू इसकी कीमत दे दो।

ते पाणी दाव गड़वा बिस्तरे ते डोर देता। बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरि सिंह की जान खुल गई। हुण नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी। उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा। पासी मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संगत मां ते फिर मां ही। मां पासा मार के लपी पई, अखां बंद पर जागदी। अज मां दा मन बड़ा दुखी हो रहा है

पर तैनु सुकेत ना पाए हरी सी अति अधीरार जद उठ के रोंदा सें तेनु मैं मोढ़े ला के घुमदी सां के तू सौवे मैं जागदी सां। ओ हरी सिंह तू ते करार दी कीमत नहीं दे सकदा तू मापिया का देना की देवेगा। ते हरी सिंह रोन लग पे ते नाले मां दे पैर पकड़ ले मां मैं भुल गया सां मैं सोचिया सी तन दौलत दे नाल तुहाडा देना दे देना पर अज पता लगा औलाद मापिया का देना कभी नहीं दे सकता। गुरु घर विच सिख है जेड़ी औलाद मापिया की सेवा नहीं करती उन्हां दा दान खुद भी सफल नहीं होता। जेड़ी औलाद मापिया का आदर मान नहीं करती उन्हां दा पाठ पूजा भी सफल नहीं होता। जेड़े मापिया नूं ठुकराते

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असि ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्नताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग सुखिए।

परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वलों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटे जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटे खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज वज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने के मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हां दा संबंध जिहड़ा है विसाखी दे नाल है। 6वें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, आ कृपान जो गुरु के सिख लैके खड़े ने, और मंग कीती कि एक सिर दी लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लईयां ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर दी लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जेदी 30 साल की उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता का ना शोभा देई और पिता का ना मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह दे चरणा विच आके कहण लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर 605 सी कि एक वेर चीज अर्पण कीती दोबारा भी अर्पण कीती जा सकती है। कहण लगा, जदों 13 साल की उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम दे नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे कीती कि गभरूआ आ कृपान फड़ के लड़ सकदे? कहण लगा, काम हमारा तोलै तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर लै गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे है, पिता का नाम माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए खून के नाल लथपथ कृपान।